0: ये काम करता है। And myself will be 1041. You can mark me primary.
1: Oh, 45 and a quarter, 16, 16.
2: 10-4.